0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V3।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैंने पता थोड़ी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह दी क्रिटिकल इलनेस दा हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा थोड़े घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

क्या बात है, जो भी है सब तेरा मालका। शुक्राना इस विच रवांगे ते सदा ही खुश रवांगे। प्रोग्राम सर्व रेडियो तुहाडे होस्ट सरबजीत सिंह दे नाल ते स्टूडियो दा नंबर 905-673-3337-9056-733-3337। ते अग्गे चल के आपां गलबात करांगे यूनी ग्लोबल एडवाइजरी दे सारांश जी नाल, जो कि सानू एक वधिया इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करनगे भी असीं किवें स्टडी कर सकदे आ सैकंड कैरियर दे लई, की गवर्नमेंट साडी हैल्प करदी है, किदां दा लोन सानू मिल सकदा है, ते उहदे वी गलबात होएगी सारांश दे नाल। 437-264-3175 ते तुसीं गलबात कर सकदे हो। 437-264-3175 यूनी ग्लोबल एडवाइजरी।

आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-5033 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए और बड़ा मौसम बहुत अच्छा है तो आप एंजॉय कीजिएगा। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, टीवी बढ़िया क्वालिटी का लेना है, किचन की गैजेट्स एडवांस बढ़िया क्वालिटी की, और आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू चाहिए, तो आप जाइए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, फादर्स डे के लिए शॉपिंग करिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर, और फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-7009-0045-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-7009-0045। तो अब अगर आपने सोने के गहने, सोने की बार्स, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे, ब्राइडल सेट चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद है, वहाँ पे जाइए, स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अल मदीना ज्वेलर्स को 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647-773-7640। और मैं पहले ही कह दूं कि अगर आप इतना अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो बहन भाई हमें मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सुनते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए अब जब प्यार गर्दिश में आ जाता है तो फिर इस तरह की गाने निकलती हैं।

0: प्यार करूं पता एक बादल आवारा जन्म जन्म से हूं साथ तेरे बनाऊं मेरा जल की धारा।
1: जी हाँ, क्या बात है, मेरा नाम जल की धारा है, प्यार कंपेयर कर लिया जल की धारा के साथ, तो आइए इसी जल की धारा के साथ बहते बहते आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाते हैं, मनोरंजन करते हैं आपका। जी हाँ, तो जो पहले वाले गाने पुराने वाले गाने थे उनका अंदाज अपना था, पर उनकी जो कोरियोग्राफी थी कमाल की थी, और पुरानी फिल्मों में आपको नजर आते हैं कि घर कैसे होते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके स्टाइल लाइफस्टाइल बहुत कुछ आपको देखने को उसमें, सिर्फ गाना ही नहीं मिलता है, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस तो वो फैशन वाले ही कपड़े पहनती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, आप तो मज़ा लीजिएगा। सो अगर आप मूव हो रहे हो तो आपके लिए मदद करते हैं एचके मूवर्स कनाडा भर में, और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना टिकट बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-4567-04 एचके मूवर्स। तो अपने घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किचनर वाटरलू गल्फ में आप निसीब खिंड को कॉल कीजिए 519-546-1260। और न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट आपके लिए, ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है, लाइव कुकिंग करवानी है आपने, किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है तो आप उनको कॉल कीजिए 905-814-1730-9058-1417-30। तो अब मास्टर कलेक्शन डिपो आपके लिए लंदन में, अब आपके लिए लोकेटेड है, तो आपने किसी किस्म की भी, आपको लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कलिजन का काम करवाना है, तो आप mastercollisiondepot.com पर जा सकते हो। तो गौर रोड लंदन में उनका गैराज है, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए रिची, आपके लिए बढ़िया सा आपके लिए सेवाएं देते हैं, तो आप रिची को कॉल कीजिएगा और mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है, या फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको आपने नया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, न्यू स्टाइल बारबेक्यूज, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट में मौजूद है, तो उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन ग्वालियर में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी फादर्स डे स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए फादर्स डे के लिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, ये ससुराल फिल्म था, महमूद के ऊपर फिल्माया गया था, तो लेट्स

पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे, पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे।

महमूद के साथ उनकी हीरोइन बन के आती थी शोभा कोटे, तो बहुत था म्यूजिक तो आइए इसी तरह आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते रहेंगे। और किसी किस्म की आपको तो ये जो गाना है ये भी आपके लिए पुराना सा गाना है, फिर आपको नए दौर में भी ले आएंगे। तो ये जो गाना है So let's go to this beautiful song, enjoy.

हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप अगर आपको किसी तरह का आपका भी कोलिजन का काम करवाना है तो लंदन तो आपके लिए लंदन में मास्टर कोलिजन डिपो मौजूद है गोर रोड पे, और वहाँ पे आप जा सकते हो और अपना कोलिजन का काम करवा सकते हो। बहुत सालों का उनका तजर्बा है, तो masterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। अब आपका जो समर है, आप बता सकते हो कि कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हो, तो आप जरूर जरूर आप बता सकते हो, तो हमें आपके बहुत सारे लोगों की अतियाँ मेले हो रहे हैं बहुत सारे, और फिर आपके लिए बहुत सारे पिकनिक्स हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज पिकनिक हो रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पिकनिक्स हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बाहर घर से निकलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दूसरे लोगों के साथ टाइम बिताने के लिए अगर आप निकल सकते हो तो आप आइएगा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल रोशन फिल्म।

0: आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है, कभी भी आपको अपने घर के लिए किचनेट सेट करवानी है, आउटसाइड बारबेक्यू आउटडोर फर्नीचर चाहिए वन ऑफ ए काइंड बढ़िया प्राइस बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन क्वार्क में। और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको
1: $10,000 in Canada on things like credit cards, payday loans, or lines of credit, are your money?
0: So, अब आपने किसी किस्म का भी आपको आपने आपको घर खरीदना है तो आप जाइएगा, आपको मदद करेंगे खुश वासिन ब्रांच 416-670-1313। आपने मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने की मदद करते हैं, तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से मूव करवाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए और अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4416-527-04। तो अभी तक अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को आप कॉल कर लीजिए पर्सनल या बिजनेस 416-302-8135।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सर में। ये गाना आप जरूर देखिएगा, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो महमूद शुभा खोटे को, बड़ी सुंदर है शुभा खोटे, इसमें बड़ी यंग है। तो उसको वो कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो, वो उसको ऐसे इशारे से कहता है, तो वो कहती है नहीं। फिर वो जब सिर हिलाती रहती है तो फिर वो ना ना में सिर हिलाना शुरू कर देता है, तो फिर वो हाँ हाँ में सिर हिलाना शुरू कर देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं हाँ कर रही हूँ। तो बड़ी मजेदार पुरानी मूवीज है, बड़ा बड़ा फनी है, बहुत ही मजेदार है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। जिनके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन होनी है बच्चों की, आर्ट ग्रेड की और बाकी

सिगरेट की, तो उन पेड़ को मैं बहुत देती हूँ। तो अब इस गाने के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपना टाइम निकालते हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप ये प्रोग्राम सुनते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए जाएं, ताकि आपकी रूह को के लिए फीलिंग हो और आपको अच्छा लगे जो है आप सुनते हो, तो आपको बहुत बड़ी ये गीत पेश कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। तो लेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग तो आप

0: रंग रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग। हनेरी नू चानन दे रंगा नाल रुशना दा पंजाब पंजाबियत दे रंगा दी मैका नू वंडदा रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग।
1: सुनना जरूर हर शनिवार रात 11 बजे तो 12 बजे तक 530 AM ते अपने होस्ट चमकौर सिंह दे नाल।

आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए Alpha Optical, your vision is your business.

नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यः।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, याली मदद, और आपके लिए और बड़ा मौसम बहुत अच्छा है, तो आप एंजॉय कीजिएगा। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, टीवी बढ़िया क्वालिटी का लेना है, किचन के गैजेट्स एडवांस बढ़िया क्वालिटी की, और आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू चाहिए, तो आप जाइए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, फादर्स डे के लिए शॉपिंग करिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर, और फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-7009-0045-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-7009-0045। तो अब अगर आपने सोने के गहने, सोने की बार्स, शादी एनिवर्सरी बर्थडे ब्राइडल सेट चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद है, वहाँ पे जाइए, स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अल मदीना ज्वेलर्स को 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 6477737640। और मैं पहले ही कह दूं कि अगर आप इतना अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो बहन भाई हमें मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सुनते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए, अब जब प्यार गर्दिश में आ जाता है तो फिर इस तरह की गाने निकलती हैं।

0: बादल आवारा जन्म जन्म शिव साथ तेरे बना हूँ मेरा जल की धारा।
1: जी हाँ, क्या बात है, मेरा नाम जल की धारा है। प्यार से मैंने कंपेयर कर लिया जल की धारा के साथ, तो आइए इसी जल की धारा के साथ बहते बहते आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाते हैं, मनोरंजन करते हैं आपका। जी हाँ, तो जो पहले वाले गाने, पुराने वाले गाने थे, उनका अंदाज अपना था, पर उनकी जो कोरियोग्राफी थी कमाल की थी। और पुरानी फिल्मों में आपको नजर आते हैं कि घर कैसे होते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके स्टाइल, लाइफस्टाइल, बहुत कुछ आपको देखने को उसमें, सिर्फ गाना ही नहीं मिलता है, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस तो वो फैशन वाले ही कपड़े पहनती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, आप तो मजा लीजिएगा। सो अगर आप मूव हो रहे हो तो आपके लिए मदद करते हैं HK मूवर्स कनाडा भर में, और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना टिकट बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 400-524-4164-524-6704 HK मूवर्स। तो अपने घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किचनर वाटरलू गल्फ में आप नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260। और न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट आपके लिए, ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। लाइव कुकिंग करवानी है आपने, किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है, तो आप उनको कॉल कीजिए 905-814-1730-5815-1730। तो अब मास्टर कलेक्शन डिपो आपके लिए लंदन में, आपके लिए लोकेटेड है। तो आपने किसी किस्म की भी, आपको लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कलेक्शन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कलेक्शन .com पर जा सकते हो। तो गोर रोड लंदन में उनका गैराज है, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए रिची, आपके लिए बढ़िया सा आपके लिए सेवाएं देते हैं। तो आप रिची को कॉल कीजिएगा, और मास्टर कलेक्शन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, या फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको आपने नया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, न्यू स्टाइल बारबेक्यूज, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट में मौजूद है। तो उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी फादर्स डे स्पेशल देखिए, और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए फादर्स डे के लिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। ये ससुराल फिल्म था, महमूद के ऊपर फिल्माया गया था।

रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे, पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे।

महमूद के साथ उनकी हीरोइन बन के आती थी शोभा कोटे, तो बहुत था म्यूजिक तो आइए इसी तरह आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते रहेंगे। और किसी किस्म की आपको तो ये जो गाना है ये भी आपके लिए पुराना सा गाना है, तो फिर आपको नए दौर में भी ले आएंगे। तो ये जो गाना है So let's go to this beautiful song, enjoy.

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है खेत संसार में। आप अगर आपको किसी तरह का आपका भी कोलिजन का काम करवाना है तो लंदन तो आपके लिए लंदन में मास्टर कोलिजन डिपो मौजूद है वो रोड पे, और वहाँ पे आप जा सकते हो और अपना कोलिजन का काम करवा सकते हो। बहुत सालों का उनका तजर्बा है, तो masterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। अब आपका जो समर है, आप बता सकते हो कि कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हो, तो आप जरूर जरूर आप बता सकते हो, तो हमें आपके बहुत सारे लोगों की अतियाँ मेले हो रहे हैं बहुत सारे, और फिर आपके लिए बहुत सारे पिकनिक्स हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज पिकनिक हो रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पिकनिक्स हो रही है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बाहर घर से निकलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दूसरे लोगों के साथ टाइम बिताने के लिए अगर आप निकल सकते हो तो आप आइएगा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल रोशन फिल्म।

0: படித்தான் சரியாகோ படித்தான் ஆய் சம்பல் சம்பல்
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वॉश वगैरह लेना है, कभी भी आपको अपने घर के लिए किचनेट सेट करवानी है, ऑक्साइड बारबेक्यू और टोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड, बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन को आपने। और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको
2: $10,000 in Canada on things like credit cards, payday loans or lines of credit, are your money?
1: So अब आपने किसी किस्म का भी आपको आपने आपको घर खरीदना है तो आप जाइएगा, आपको मदद करेंगे खुशवासी ब्रांच 416-670-13। आपने मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने की मदद करते हैं, तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से मूव करवाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए और अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4416-524-6-5246-7-04। तो अभी तक अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को आप कॉल कर लीजिए, पर्सनल या बिजनेस 416-302-8-34-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16-3024-16

0: में हजारों तूफान आता नहीं है।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सर में। ये गाना आप जरूर देखिएगा, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो महमूद शुभ खोटे को, बड़ी सुंदर है शुभ खोटे, इसमें बड़ी यंग है, तो उसको कहते हैं तुम मुझसे प्यार करती हो, वो उसको ऐसे इशारे से कहता है, तो वो कहती है नहीं। फिर वो जब सिर हिलाती रहती है तो फिर वो ना ना में सिर हिलाना शुरू कर देता है, तो फिर वो हाँ हाँ में सिर हिलाना शुरू कर देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं हाँ कर रही हूँ। तो बड़ी मजेदार पुरानी मूवीज है, बड़ा बड़ा फनी है, बहुत ही मजेदार है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। जिनके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन होनी है बच्चों की, 8th grade की और बाकी के ग्रेड की, तो उन पेरेंट्स को मैं बहुत देती हूँ। तो अब इस गाने का मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपना टाइम निकालते हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप ये प्रोग्राम सुनते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए जाएं, ताकि आपकी रूह को के लिए फीलिंग हो और आपको अच्छा लगे जो है आप सुनते हो, तो आपको बहुत बड़ी ये गीत पेश कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। तो लेट्स दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग तो आप

छोड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: This program is a proud member of the Canadian Punjabi Broadcasters Association, CPBA.
1: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कांटेक्ट करो 647-400-88-62

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikkiya nikkiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-88-12 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक तनिघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने जी, उन्हां नूं भी निघी जिहा आखदे आ, क्योंकि अपना साथ हर एतवार वाले दिन 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल बन जांदा है। 12 तों 1 सुणदे हो रामस पंजाबी, ते 1 तों 2 सुणिया जांदा प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसीं प्रोग्राम तों बाद विच मेरे नाल करनी हुंदी आ ते 416-669-1379 ते कर सकदे हो 416-669-1379। अदरवाइज स्टूडियो कॉल करने वास्ते टैलीफोन नंबर होंगे ने जी 416-233-7368 या 8297 4162337368 या फिर 8297 ते अपनी गलबात हमेशा ही हो सकती होंगी है। कितने ट्रैफिक के रुकावट भी देखते हो तो तद भी तुम इन नंबर से कॉल कर सकते हो। कोई इनफॉर्मेशन साझी करनी हो अपने दोस्तों मित्रों के नाल तो फिर मैं तुम टैक्सट भी भेज सकते हो 416-669-1379 टैलीफोन नंबर दे उते। और साड़ी गलबात का यह सिलसिला जिहड़ा तुहाडे तक पहुँचाउंदे वे सानू मदद ऑप्टिकल वन वाले करदे ने 905-455-0752 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। फास्ट फाइड फीसा तो सानू सपोर्ट मिलती है 205 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ते लोकेटेड ने 905-595-55 टैलीफोन नंबर है 9055-00-9555 ते कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। बड़ी जल्दी कोशिश होएगी साड़ी कि तुहानू लाइव उत्थों जरूर जोड़िए कि कुछ स्पैशल अज जिहड़ा फास्ट फाइड पिज़्ज़ा ते चलदा। अदरवाइज तुसीं कॉल करके जरूर पता कर लिओ 9055-00-9555 टैलीफोन नंबर है। फास्ट फाइड पिज़्ज़ा 205 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन दे विच लोकेटेड ने। पंजाबी बाय नेचर 416-937-2061 टैलीफोन नंबर है। ली बैंकट हॉल 416-238-8154 416-238-8154 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। एयरपोर्ट निसान 905-791-9900 ते संपर्क हो सकता है। ट्राई सिटी प्रोफेशनल रियल्टी ब्रोकरेज तों अवतार सिंह जी बडियाल 416-464-2067 ते गल हो सकती है। किंग टोइंग 416-677-2222 टैलीफोन नंबर है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 ते संपर्क किया जा सकता है। ड्रीम होम अपलायंसिज 905-805-3000 ते गल की जा सकती है। प्रीमियम आटो रिपेयर एंड यूज कार सेल्स तो गुरप्रीत अड्डा जी 416-747-6800 ते गल कर लेनी। गिल स्वीट फैक्टरी 905-799-2616 6 लोकेशनस ने जी पूरे कैनेडा भर के 4 साढ़े इतने जी टी ए दे विच ते 2 कैलगरी दे विच ने। हैड ऑफिस कॉल करके जानकारी ले सकते हो 905-799-2616 टैलीफोन नंबर है जी। और वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट सर्विसिज एंड पासपोर्ट वीज़ा एंड NRI सर्विसिज तो दुपेंद्र लूंबा जी 647-402-2202 ते उन्हां दे नाल संपर्क किया जा सकता है। द रॉयल सिटी कंस्ट्रक्शन तो अजय सिंह जी 437-766-5158 ते तुसीं गल कर लैनी 4377-665-1588। और वंस अगेन अज तुसीं नगर कीर्तन दे विच अगर शामिल होए हो जां शामिल होण जा रहे हो ते तुहाडे वास्ते शुभ शामां जी अज दे दिन दे लई।

0: शिकिरी
1: जी, मैं दोबारा से आई हूँ भाई, वो आप इसका रखें एवरग्रीन रेडियो,
0: रेडियो एवरग्रीन,
1: हाँ जी, और ये भी रख सकते हैं सदाबहार रेडियो,
0: हाँ पंजाबी तो सदाबहार है ना,
1: और रिम जिम रेडियो,
0: रिम जिम सदाबहार मैनू ज्यादा वधिया लग रहा है इन्हां दे विचों, ते बाकी देखते हैं हजे होर जिहड़ियां सजेशन लैने
1: हैं। मेरा नाम वैसे आफिया खान है, शकील खान मेरे हस्बैंड का नाम।
0: अच्छा जी, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू भाई,
0: शुक्रिया जी, बाय। सो स्टूडियो नंबर है जी 416 233 73।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: रेडियो शो।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

0: मेरा बिजनेस नहीं ये चलता। पापा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती। पापा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पापा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? देव तातले नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई। स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदी हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबदी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਵ ਤਾਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾ ਬਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫੋਨ ਕਰ 416-677-0609 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32 55 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $50 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देवता अगले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई, स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।

लेसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यही खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that, I sign off. She'll see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80.
2: 98.
1: ए की गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.
5: It's wake up time. It's wake up time.
4: Now is the time to wake up.
6: Crank up the radio. You're listening to the Dave Todless Show, brought to you in part by Culture of Punjab.

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी कि अगले एक घंटे विच तुहाडे ढेर सारे डालरां दी बचत करके दईए। सब तो पहला सुल्तान जी दा धन्नवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम टू द शो सर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते बहुत लंबे और किन्ने वरे हो गए इस काम च?
1: 39 ईयर।
0: लो जी ऑलमोस्ट 40 सालां दा इस बिजनेस च। जिहड़ा पुराना बंदा हुंदा उहनूं इक तां नॉलेज पूरी हुंदी आ, इन एंड आउट दी पूरी नॉलेज आ। जिहड़े सेल्समैन रखणे आ, किहड़े रखणे आ, किन्नां नूं किहड़ी ट्रेनिंग देणी आ, हर एक शै इन्हां नूं पता है। लेकिन अज असीं उस बारे नहीं गल करनी, अज एक्सपीरियंस 40 साल दा हैगा, अज गल करनी आ टेलीविजन टेलीविजन ते टेलीविजन टेलीविजन ते।
1: ओदी रीजन इह आ जी कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा ते फीफा वर्ल्ड कप दे विच सैमसंग ने स्पोंसर कीता ते सैमसंग चाहुंदा कि मैक्सिमम बिग स्क्रीन टीवियां ते असीं डिस्काउंट करिए ताकि कस्टमर्स जिहड़े आ वड्डी स्क्रीन ते अपने घरां च बैठ के मैच देख सकन। और इहदे च एडवांटेज इह दित्ता जा रहा कि कोई 200 या 300 या 400 नहीं जी, 600 तो लाके 800 डालर दा डिस्काउंट है जे 85 इंच तक टीवी लेंदे हो।
0: अच्छा
1: जी। जे टीवी लेंदे जी 98 इंच या 100 इंच या 115 इंच ते ओदे च तकरीबन मोर देन 1000 डालर दा डिस्काउंट है जेड़ा एस टाइम दिता जा रहा। जदों मैं कैलकुलेट करदा 40% दा डिस्काउंट बन जांदा, समवेयर इट्स मोर देन 40%। 85 इंच दा QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसैसर दे नाल 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी है, क्लीयर क्रिस्टल पिक्चर क्वालिटी है। $2000 वाला 1299 सैमसंग ने 1299 एक्सक्लूसिव डील दिती है बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस नो। ब्रैम्पटन अपलायंसिस डॉट कॉम साडी वैबसाइट तो तुसी डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी लै सकदे ते वॉक इन कस्टमर लई एडिशनल गिफ्ट्स जिहड़े आ उह भी तुहाडा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल 4-5 टीवी इन स्टॉक रह गए होंगे, जल्दी क्विक एक्ट करना है तुसी। बिग स्क्रीन टीवी नू जे होल्ड करना है मैक्सिमम डिस्काउंट दे नाल 1299 दा, अदरवाइज 1800 डालर तो घट अगे जाके टीवी नहीं मिलना।
0: 1299 दा टेलीविजन ले लो, 6 महीने पैसे देने की लोड़ नहीं, कोई ब्याज कोई इंटरस्ट नहीं लगना। जिस दिन तुसी टेलीविजन लेके गए घरे उस दिन तो यह पेमेंट सिस्टम चलना है। सो 6 महीने 1 सेंट देने की लोड़ नहीं।
1: ते कदी सोचिया होएगा कि 55 इंच टीवी तुहानू सिर्फ 399 दा मिले?
0: हां जी, ना जी, सुपने ही हुंदे सी।
1: 800 डालर दी प्राइस एज ऑफ टुडे भी जी।
0: अच्छा,
1: पर तुहानू 399 च 55 इंच मिल रहा। 65 इंच कदी सोचिया सी 699 दा मिले, एज ऑफ टुडे भी $1000 दी प्राइस है 699 दा मिल रहा। पर उन्नी देर ही मिलना जिन्नी देर स्टॉक अवेलेबल है, उस तो बाद इन्ने दा ही मिलना, $1000 $900 दा ही मिलना 65 इंच भी। पर अज दे दिन तुहानू 699 ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस तो मिलना। और 699 तुसी चाहो 6 महीने च पे करो, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
0: अच्छा, जेड़ा 6 महीने च पे करो, हो सारा महीने दे महीने में थोड़ा थोड़ा करके?
1: हाँ जी, ईवन देखो भाजी गल ये है ना जी, तुसी $3000 तक दी भी शॉपिंग करो ना।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: $500 महीना करके पे कर दो, 3000 पूरे हो गए।
0: सो जिन्ने दी भी शॉपिंग कर रहे हो थोड़े थोड़े करके देने हैं, वो दे दो कट्ठे देने हो तो तुहाडी इच्छा है। कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे महीने महीने दे दो चाहे 6 महीने दे दो।
1: ईवन $2400 तक दी भी शॉपिंग करो, $400 महीना करके दे दो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए तो क्या कि बिग स्क्रीन टीवी $3500 वाला 98 इंच।
0: हाँ जी,
1: देखो किन्ने कंज्यूमर दी आम बजट च आ गया, $3500 तो सिर्फ 1999 दा।
0: हाँ जी,
1: ते 1999 भी 6 महीने च पे करना, थोड़े थोड़े करके पे कर दो।
0: तो बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है। तुसी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस चक्कर लाओ, हाथ लागे दे लो। जेहड़े टीवी टेलीविजन तुसी दस रहे हो